Now we shall present a very short piece, last piece, about the Guru. Sadho, sadho aisa hi guru bhave, jo raag rang ka bhar bhar pyala piwe aur pilave. Sadho aisa hi guru bhave, naad chhipa tan mein lay man mein, ko pata na paave, chand suraj ka lochan guru ka, dekhe aur dikhave. Sadho aisa hi guru bhave, परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी एक ओमकार धुन गावे. साधो ऐसा ही गुरु भावे. वी शैल कंक्लूड अवर रिसाइटल विद दिस ऑफरिंग ऑफ गुरु इन द फीट ऑफ लॉर्ड.

0: So that brings us to the end of the current episode of Radio Sai Bhajan Classroom. We hope you enjoyed this episode. If you have any queries or comments, as always, you can write to listener@radiosai.org. The audio engineers for this program are Sunil and Abhishek, and the background score was done by another alumnus from Chennai, T.S. Ramakrishnan. With heart full of gratitude, we offer this program at the lotus feet of our most beloved Bhagwan. You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 25th of February 2016 as part of Thursday Live from Prashantinilayam on Asia stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne san 1973 ke grishmakalin kakshaon mein Sri Adi Shankaracharya virachit Bhaj Govindam par mahatvapurna pravachan pradan kiye. In pravachanon mein bharatiya aadhyatmikta aur vedon ka saar bhara hua hai, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 19 जून 1973 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
3: भूमिका। भगवान बाबा अपने इस प्रभावपूर्ण एवं पथ प्रदर्शक प्रवचन में युवाओं को मित्रता के संदर्भ में कई गुर बताते हैं। स्वामी ने महाभारत और भागवत से उदाहरण देते हुए सच्ची एवं कपटी मित्रता के अंतर को स्पष्ट किया है। तीन प्रकार के मित्रों के रूपक द्वारा स्वामी ने यथार्थ मित्रता की परिभाषा स्पष्ट की है। मित्रता के नाम पर राह भटक जाने वाले मित्रों को सचेत करते हुए स्वामी ने ईश्वर को ही अपना मित्र बनाने का अनिर्वचनीय संदेश दिया है। भगवान बाबा स्पष्ट करते हैं कि धन संपत्ति कदापि सच्ची मित्रता के आधार नहीं हो सकते हैं, तथा विपरीत परिस्थितियों में भी साथ देने वाला ही सच्चा मित्र है, जो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहकी सार सुहागन जानै, तज मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देखना सुनै अपाखै, सो कत जानै।

जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिलै चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै धारिया। अवरना सूझै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहि ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर भाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हौ मैं मेड़ चलै गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़ै खोटी रास। गुरमुख नाम मिलै साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पावना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे। तिनके तै दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दया पदाता। क्या है जंत विचारे, मुक्त बंद सब तूते होए। ऐसा आख वखाणे, गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए। मनमुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी। सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई। सच्चा आप सवारे, परम पुलाणे से मनमुख कहिए। नारोवार ना पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए। गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माहि निस्तारे। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए। दूजा होए ता सोजी पाए, तिसते दूजा नाही कोए। तिसदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसै मन आए। ता को जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवटी लाए। आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए। आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए। जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगै तसे आए। सब सच दिखाले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवको सेव साहिब ते। क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है। समय एक समाना, सतगुर परचय हर नाम समाना। जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए, अंदन लागै सही ध्यान। रहाओ
क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना। जो आप चलाए तवै कोई चाले जो हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा। एक ना करमै दे वड़ियाई एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थट बनाया पूरा वेखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर माए समाना। यह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हरनामा। रहाओ चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना। जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कलमै कीर्त हरनामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मने अभमाना। कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावै सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आवसै मन आए। आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए। रंग चलू लै हरस पाए ओ रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई। हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई। जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरा। गुरमुख मांगाओ तेरा नाम निवाजा। रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेखै बहु न मरै ना जंपे खै। कर ही मैं सब कोट निधान सतगुर दिखाए गया अभमान। सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई। जै देखा तरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुरपूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना। ओह ढोवै ढोर हाथ चम चमरे हर उधरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख्या जन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मानो पज राम ना मैं रामा गुरमत हर रस पाई है। होर त्यागो ने फल कामा। रहाओ
ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ, ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹਮਾ। ਓਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੂੜਿਆ ਕਰਮਾ, ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਧੁਰ ਪੂਰਵ ਲਿਖੇ ਵਡਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਮਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹੇ ਵਿਖਿਆ, ਬਹੁ ਦੁਰਬਤ ਮੈਲ ਪਰਾ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭ, ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮ ਨਰਹਰਾ, ਜਾਨੀ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਮੇਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰਹਾਓ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਹਰ ਦੇਹ ਮਤੀ ਜਸ ਕਰਾ, ਤੁਮਰਾ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ, ਜੋ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹ ਤਰਾ, ਸਾਗਤ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਤ ਮਧਮ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਾ, ਤੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਦੋਚਾਰੀ, ਓਏ ਜਨਮ ਓਏ ਫਿਰ ਮਰਾ, ਜਿਨ ਕਹੋ ਤੁਮਹਾਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ, ਤੇ ਨਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਸਰਾ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਹਰ ਭਜਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਸਭ ਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ, ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਰਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ ਰਹਾਓ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਸੀ ਉਤਮ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਆ ਉਪਦੇ ਜਨ ਕਰੋ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖਾਓ, ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖਰਸੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ, ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸਭ ਰੈਨੀ, ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਗੁਰ ਨੈਨੀ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤ ਬੈਨੀ ਰਹਾਓ। ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵ ਚਿਤਵੀਐ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਛੈ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਨੀ, ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਵਾਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜਨਤੈਨੀ, ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅਨਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਅੰਧ ਅਨੰਦੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ, ਸਭ ਚੁਕੇ ਜਮਕੇ ਛੰਦੇ, ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਰਹਾਓ। ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਕ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ, ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ, ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਗੋਵਿੰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बोलो भैया राम नाम पतत पावनो, हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा, जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ, हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसार नहारा, गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी, सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे, कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो, क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ, पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से, हर सोग ते रहे निरारा सिरी ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर भयंगा हमें पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै, हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर तिसमें लाल गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल, जिन चाखिया तिसे आया साध जो गूंगा मन में बिस्माद, आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण अक्स माया, बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाका वड प्रताप, गुर प्रसादना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ रखवाले जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्र मेरे अगंत गुण ठाकर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ, प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़ हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम हो तन शार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला।

नेरे पशु प्रेत मुगत कौतारे पान पार उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा बिखै वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा सख्त ही काई सादा दासी थियो नानक से दर शोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया धन धन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागणी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरणी पाई है प्रेम बिछोर ना मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचर्ज अचर्ज स्यो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलोपा सारा आपे बणज आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप ही।

0: आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवां, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवां, तन मन धन अर्पो सब अपना, कमर सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवां, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम त्याई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट है पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवां, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंधकूप ते कर गै लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए परसीना।
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
3: This is Radio Sai Global Harmony. Next, a selection of Sai Bhajans.